0: आपका लोन निकला है?
1: रख वो, रख दे, रख वो।
2: याओ, I'm the dealer.
3: ठंड में रखो गाली।

0: होया की है, कितने बजे की होया, किदे नाल गुप्त मीटिंग हुई है, सारा कुछ दसूंगा। शुरू होंदे ते अंदर जांदे और उस तो बाद ऑडिटोरियम च होंदी एक मीटिंग, मीटिंग नू संबोधित करदे ने मनीष सिसोदिया, जिहदे च सरकार दे कम्मां दी गल होंदी है, जिथे यह गल होंदी है कि फीडबैक की है लोगों का, और जिथे हुण अग्गे दी रूपरेखा भी तैयार की जाती है कि भाई अग्गे पिंडां च जाके की करना। एक परची या एक डायरी फड़ाई जाती है जिहदे च एक सर्वे टाइप का फॉरमैट सीगा जिहड़ा कि जाके इन्हां ने पिंडां पिंडां च हुण करना, फीडबैक लैना लोगों का, यानी कि बहुत सारे सेंसस तो चल रहे हैं पर कुछ फीडबैक हुण अपने ऑब्जरवर, हुण मैनूं यह नहीं समझ आ रहा है ऑब्जरवर कौन ने, ये पार्टी के लोग ने या जिहड़े पैसे दे के हुण एक सेंसस कराया जा रहा है वह लोग ने, मतलब बहुत सारे अजे डाउट ने इहदे ते। मैं तुहानूं इशारा देता, तुहानूं हिंट देता, बाकी बहुत जल्द ये भी सामने आएगा। खैर वो सारिया चीज़ा चल दियाँ, पर इस विचकार ना एक बड़ी इंट्रस्टिंग वीडियो सामने आई, बहुत इंट्रस्टिंग तस्वीर उस वीडियो उस मीटिंग तो सामने आई हैं कि जदों आम आदमी पार्टी के विधायक जिहड़े सी ओह कुछ कसरत जी करते भी नज़र आए, एक्सरसाइज करते नज़र आए, हालांकि एक्सरसाइज करते नज़र आए उसका मजाक भी बहुत उड़ रहा, पर उड़ना नहीं चाहिए, वो मजाक उड़ाने वाली गल नहीं है। वो एक रिंग जिन्हों कहते एक दूजे तो लंघा रहे और यह मैसेज देने की कोशिश सी कि असी सारे कट्ठे हाँ। उदों की है कि जी लंच तो पहला यह सारी एक्सरसाइज की गई, फिर कराया गया लंच। एक गैप इन्ना क्यों दिता गया, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधित करना सी, और जो मुख्यमंत्री साहब ने संबोधित करना सी ते उन्हां दा समा 3:30 बजे का सी, क्योंकि कोई चंडीगढ़ होर किसी चैनल का कॉन्क्लेव और बहुत सी और आंदे होंदे थोड़ा जा लेट हो गया, इस करके लंच तो पहला वो सारी एक्सरसाइज कराई गई। पर बार ते MLA कर रहे सी एक्सरसाइज, सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दे मालक दे कमरे दे विच शुरू हुई एक वक्री एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज मौजूद सीगे मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया के सज्जे खब्बे वाले दो तीन लोग, मतलब उन्होंने नाल के लोग जो काम कुम सामते हैं, दो लोग जो मेरे को जानकारी है तीन से शायद, तो होशियारपुर तो मैंबर पार्लीमेंट राजकुमार चब्बेवाल तो उन्होंने पुत्र इशांक चब्बेवाल, यानी कि जो चर्चा पिछले कई दिनों तो दो MPs नू लेके चल रही थी, एक नू मुख्यमंत्री ने दो दिन ब्लैक कॉफिया पिया के अपनी खुशी जाहिर करके, मैं हूँ इस तो ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, एक MP नू एक दिन पहला बुलाया गया, फिर अगले दिन एक मीटिंग सो कॉल्ड रखी गई हड़ा नू लैके सतलज के प्रबंधा नू लैके, दो दिन उत्थे चर्चा हुई यानी कि मैनेज करन दी कोशिश की, तो एक MP नू अज सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के मालक के कमरे के विच एक्सरसाइज मैराथन चली। हुण तुसी कहोगे बिल्कुल है, बड़ी बहुत पुख्ता जानकारी दे रहा। खैर हुण मैं आना मसले ते, बहुते MLA नहीं पहुंचे, हाँ हुण एक वह वखरा सवाल है, वो MLA सदे नहीं गए सी या वो आए नहीं, इहदा जवाब आम आदमी पार्टी बेहतर दे सकती है, और मैं इस करके कह रहा यह थोड़ा जिहा क्लैरिफाई होना चाहिए, फिशरी है कुछ। पहला यह कहना कि MLAs नू नहीं सद्या गया, कोई MLAs दी मीटिंग नहीं, पर अज MLA सीगे, फिर सारे नहीं सी ते की हुणे आम आदमी पार्टी क्लैरिफाई करेगी कि सारे सदे सी जानी, और जो जानकारी है शायद कल भी एक मीटिंग सदी जाने की तैयारी की जा रही है, वो शायद चंडीगढ़ होएगी, जो मेरे सोर्सिस कह रहे, बाकी उहदी पुष्टि आम आदमी पार्टी ने करनी है। हुण मैं जिहड़ी गल करनी चाह रहा कि मीटिंग आम आदमी पार्टी दी पर चर्चा जाण वालियां दी, चर्चा गड़वियां दी, समुंदर दी चर्चा, फोन कॉल ते वधाइयां दी, इह मैं नहीं कीती, इह मुख्यमंत्री जदों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं जुड़े उन्होंने वैसे तो गल्लां बहुत कहियां, फीडबैक की है, लोग की कहिंदे है, पर वह अपनियां गल्लां च फोकस इहदे ते ही करदे नज़र आए, जो चले गए जाण दिओ, कोई फर्क नहीं पैणा, पार्टी शुरू हुई सी इन्ने बंदिया तो 4 सीटा 14 चाहिया, 19 कला मैं रह गया, जिहड़े सी वह गड़वियां भर के चले गए, वह गड़वी जो गए सीगे, पर असी समंदर हाँ, यानी कि आम आदमी पार्टी की समीक्षा मीटिंग, अच्छा हाँ समीक्षा तो याद आया, बार बोर्ड सीगे कि जी ऑब्जरवर मिलनी या मीटिंग, अंदर जिहड़ा मीटिंग दे सामने फ्लैग सीगा वह सीगा समीक्षा मीटिंग, मैं तां समीक्षा की गल कर रहा। तो मुख्यमंत्री साहब तो आप ही सारा कुछ चर्चा करते रहे, चाहे राघव चड्ढा एंड कंपनी की छड़ के जाने वालों की, तो फिर क्यों ना कहा जाए कि चर्चा हुई है। हाँ अंदर मनीष सिसोदिया ने जो डायरेक्शन दिते ने वो बाहर आके किसी ने अजे तक नहीं दसे, बहुते MLA मैं भी कहा वो एको गल कहते भाजी फोन पर नहीं मिलकर गल करा, तो कल तक थोड़ा होर जानकारी दे देंगे, मतलब MLA कह लो, चेयरमैन कह लो, वर्कर कह लो, जो भी उत्थे मौजूद सके, एवें ही सुइया ना घुमाई जाए, कदम साढ़े फोन भी टैपिंग से ला दो कुछ नहीं लभना, सोर्स सोर्स ही होंदा, अज मुख्यमंत्री साहब भी कहिंदे सी अज तक मैनू सोर्स लभ्या नहीं किसी चैनल ते, और तुहाडे सज्जे खब्बे होंदे सोर्स ला लो। खैर मुख्यमंत्री साहब ने आप जिक्र किया राघव चड्ढा होरां दा, सुन लो तुसीं
1: जिहड़ियां दो चार पिछले दिन ही होया कुछ, दो चार बंदे ना कोई पार्टी नहीं

0: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
1: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
2: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर्थ लड़ने के लिए,
1: तो भेज अपनी फौज, अब तू ही आ जा।
3: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहां से लाता है?
1: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े के जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
4: गिग एक्सप्रेस जो कि हायर कर रहे ने ओनर ऑपरेटर अते कंपनी ड्राइवर फॉर सिटी वर्क एंड मॉन्ट्रियल ट्रिप। जे तुसी ओंटारियो दे किसी भी सिटी च रहने हो ते मिसिसागा तो ओशवा या मिसिसागा तो विंसर दे लोड लेना चाहने हो ते आज ही कॉल करो 905-615-0544 एक्सटेंशन 6013 गिग एक्सप्रेस।
5: सत श्री अकाल जी, आप देख रहे सारे दर्शकों नूं, महेंद्रपाल सिंह ढेरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते जिवें साडे दर्शकों नूं पता ही है जी, हुण गर्मियां दा सीजन आ चुका, तो केटरिंग घरां दे विच ब्याह शादियां फंक्शन सारा कुछ अखंड पाठ घरां दी नवें घर की ओपनिंग बच्चे का बर्थडे तुसीं करना तो मोहन ढाबे नूं तुसीं भुलना जायो। केटरिंग करवानी है तो तुसीं जरूर साडे नाल संपर्क करो, मोहन ढाबे ते आओ 416-450-99। साडे कोल हर तरह के नवें डिजाइन, हुण तुहानूं डिस्पोजेबल प्लेटां लैके आउण दी वी लोड़ नहीं, साडे कोल नवीं प्लेटां कप कौलियां गिलास सारा कुछ पहुँच चुका, तो तुसीं जरूर एक बार साडे नाल संपर्क करो। साडा फूड तो तुसीं ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, साडी प्रेजेंटेशन देखो, एक बार साडे यूनिट दे विच साडे रेस्टोरेंट दे विच पधारो, एक क्वीनस गेट बुलेवार्ड यूनिट नंबर 13 असीं बोल्टन दे विच आ जी, अपने हाईवे 50 एंड क्वीनस गेट का कॉर्नर है, मोहन ढाबा 416-450-99। सत श्री अकाल जी।
4: जो तुसी वधिया स्पोर्ट्स मटीरियल जिवें कि जर्सी टी शर्ट बैट्स ट्रॉफीज शूज या भी किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एसेसरी दी पाल विच हो या फिर तुसी अपनी टी शर्ट ते मनपसंद प्रिंटिंग कराना चाहते हो तो अज ही विजिट करो पंजाब स्पोर्ट्स 2565 स्टील्स एवन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन। वधेरी जानकारी लिए तुसी कॉल कर सकते हो 905-789-7664।
6: ਕੁਆਂਟਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ 1998 ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।
7: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪਲੈਨ ਜਿਵੇਂ RRSP, RESP ਜਾਂ TFSA ਅਤੇ ਨੌਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੈਨਸ ਵਿੱਚ 8-12% ਰਿਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
8: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, $60,000 ਤੇ $100,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
9: ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ST Towing ਜਾਂ ਕਾਮਟੋ 416-243-7777 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-513-1313। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ST Towing।
10: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 di friendly dispatch ate vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

0: गल नहीं करनी, गल होएगी सिर्फ ते सिर्फ सीएम शराब ते सवाल दी। फिर कह रहे हैं आज गल सिर्फ सीएम शराब ते सवाल जड़े उठ रहे हैं। जिस तरह विरोधी धिराने पंजाब दी विधानसभा दे विच हंगामा करके ये गल कही कि मुख्यमंत्री शराब पी के विधानसभा पहुंचे और उस तो बाद हंगामा शुरू होया। मुख्यमंत्री जो बोल रहे सी तो बहुते लोगों ने या जो कांग्रेस के विधायक से उन्होंने कहा कि तुसी वेख के आप समझ सकते हो कि मुख्यमंत्री शराब पी के विधानसभा आए। एक गल सुखपाल खहरा ने चकी और उस तो बाद प्रताप सिंह बाजवा तो लेकर सारे कांग्रेसी विधायक इस गल से अड़ गए। वो कि गल से मुख्यमंत्री साहब की जिन्हों लैके सवाल खड़ा होया, एक बार भी सुन लो।
1: गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, वे मान योग लोग आए हैं, इतने अफसर बैठे ने, वो सारे गैलरिया जड़िया बकायदा पहला दसा जाता है कि लाते लाते नहीं दर्द बैठन रहे, बिल्कुल हिलना नहीं, बस ऐ रहना। तो सर इतने उन्होंने क्या गया तो उन्होंने ठीक कर ली। वो तो मैंबर नहीं, वो मैंबर नहीं हैगी, मैंबर नहीं हैगी। तू तो मेरी बेटी बारे भी बोली जाना, तेरा की है यार, तू रहन दे ना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा।
0: खैर मसला सीएम बोले और उस तो बाद तुसी भी वेख लिया, इस तो बाद मैं इतने जजमेंटल नहीं होना, ये तुसी आप अंदाजा लगाओ कि शराब पीती सी जा नहीं पीती सी। आज मैं पंजाब दे लोकां ते छड़ रहा, कमेंटा दस दिओ। लोग फतवा ही होंदा ना, लोग फतवा कोई कह के नहीं होंदा। इस बयान मुख्यमंत्री साहब दे जिहदे ते सवाल खड़े हो रहे साडे माण योग सीएम साहब दे इस शराब नू लैके जो सवाल खड़े हो रहे, इस करके अज मैं थंबनेल कैप्शन भी यही रखे कल्ला ही सीएम शराब ते सवाल, इहदा जवाब तुसी दिओ, तुसी सुन लिया। पर जदों ये गल तुरी तां एलओपी प्रताप सिंह बाजवा ने सदन च खड़ के ये मंग की और हैरान कर दिता सारियां नू कि जी एल्कोमीटर, एल्कोमीटर होंदा जिहड़ा ट्रैफिक चलान वालिया कोल हुंदा जिहड़े फूक मराउंदे आ, वह एल्कोमीटर कहिंदे जी वह लैके आओ तो चैक कराओ। पंजाब विधानसभा वर्गी गरिमामई थां ते इस तरह की गल भी आनी ये सवाल खड़े करदी है। हुण दसो अज दा दिन किहड़े इतिहास च लिखिया जाएगा। बयान सुनो प्रताप बाजवा दा।
2: ऑनरेबल मेंबर ने बहुत सीरियस चार्ज लगाया, एंड दैट आल्सो ऑन द हेड ऑफ द स्टेट। इफ इट इज ट्रू, इस तो माड़ा दिन फिर नहीं हो सकता। इट इज अ ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी। मेरी बेनती सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, मेरी गुजारिश है अल्का मीटर दा आ सारे इथे ने, तुसी दरवाजे बंद करो
0: हंगामा इन्ना वध गया कि कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर नूं चिट्ठी लिख दित्ती, यानी कि इस पूरे एपीसोड नूं डॉक्यूमेंटेड भी कर लिया। मैं इस तों बाद दी गल ते आऊंगा, पीती सी नहीं पीती सी अज बिल्कुल तुहाडे नाल जानकारी सांझी करूंगा, क्योंकि मैनूं कोई डर नहीं इहदा, मैं डर के नहीं काम करदा और करना भी नहीं चाहिए। मैं अज बड़े पोलाइट होकर कह रहा, क्योंकि अज विधानसभा की कार्रवाई वेख के लगता है लाइव टैलीकास्ट या मशीनां नूं अग ला दो, लानता ने अजिहा लाइव देखण ते। पंजाब दे लोकां दे की मैसेज जा रहा, बाकी तुसीं समझ गए जो मैं कहना चाह रहा, पंजाब दे लोकां च सुनेहा की जा रहा है कि असीं की चुन के भेजे, जो हालात उत्थे हो रहे वह किहड़े हालात ने तुहानूं बैटर पता। खैर चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस पार्टी वालों, अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर इमीजिएट एल्कोमीटर एंड डोप टेस्टिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल एमएलएज ड्यूरिंग द ऑनगोइंग सैशन। आ चिट्ठी है, बहुत लंबी चौड़ी है, मैं उस नहीं जाऊँगा क्योंकि ये नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी और मेरी कोशिश होंगी 8-10 तो मिनट तो उपर की ना हो। यानी कि प्रताप सिंह बाजवा ने सारे MLAs दे देते साइन कराया, चूंकि LOP ने और उन्होंने चिट्ठी लिखी और अखीर च साइन कुलतार सिंह संधवा और उन्होंने चिट्ठी लिखी गई है कि जी जांच कराओ, एल्कोमीटर मंगाओ, सारे दे डोप टेस्ट कराओ। और उन्होंने साफ तौर पर कहा जी मुख्यमंत्री शराब पी के आए थे, इस चिट्ठी मैनशन है। साइन ए एक एक बंदे देने प्रताप बाजवा ने लिखी है, सुखपाल खहरा, अरुणा चौधरी, कुछ आदि साइन मैं नहीं समझ आ रहे, पर 12 बंद साइन इस चिट्ठी के होए पे है। एक ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਐਡਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ।

0: फ्लोरिंग सिर्फ एक ना ही नहीं सच्ची बेस्ट बार्गेन है।
1: बेस्ट बार्गेन थी मिलते ने ब्रांड नेम कारपेट्स, हार्डवुड वाइनल अते लैमिनेट फ्लोर्स बार्गेन प्राइसेस थे।
0: साडे स्टोर ते आके आप सिलेक्शन देखो या अपने घर बैठ के चूज करो।
1: लाजवाब क्वालिटी, टॉप क्लास सर्विस, बेस्ट बार्गेन तो बेहतर कोई नहीं।
0: वी ऑल्सो सर्विस होटल्स, मोटेल्स, बैंक्वेट्स एंड हाई राइज बिल्डिंग्स। बेस्ट बार्गेन कारपेट्स 905-696-7877।
2: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ।

गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुकत दायक काम। आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्ब भंजन आदि रूप असूत। अंग हीना पंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रत।

चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी शांद नाश

अनित हैं सुनित हैं, अजात हैं अजाद हैं, चरपट शांत तो प्रसाद। सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता।

हजर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्तुल कलाम है के साहिम के राह है वाहिगुरु के साहिब दिमाग हैं के हुस्नुल चराग हैं के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरी फुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिम के राह है के नरकंग प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सरबुल गवन

हर का नाम जन को मुक्त सुजुगत, हर का नाम जन को त्रिवत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न पांगे, हर का नाम जन की बड़ियाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नान पूजे हर हर देवा, हर हर जन के मालिक जीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन के ओर सतानी, हर प्रताप जन अवना जानी, होत बोध जन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट नहीं छपे, हर की भगत मुग्ध बहु करे, नानक जन संकेत तरे, पार जात ए हर को नाम काम देन, हर हर गुण गावे, सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत हृदय वस, संत प्रताप दूरत सबन स, संत का संवड पागी पाइये, संत की सेवा नाम त्याइये, नाम तुल कछ अवर न होई, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। श्लोक बहु सा सर्व सिमरति, पेके सर्व टंडोले, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदे, जाप तप ज्ञान सब त्यान, खड़ शास्त्र समृद्ध बख्यान, जोग अभ्यास कर्म तर्म क्रिया, सकल त्याग मन मदि फिरे, अन्य प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहुरतना, शरीर कटाए होमे कराती, वर्तनेम करह बहुपाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर दिवे, महा उदा तपी सरसिवे, अग्न माय होमद प्राण, कनक सो हैवर पुमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम असाधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तो पी होवे मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन ते हुटे, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जाते, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभु न बिखे टरे, जल तुवे बहु देह रीत, शुद्ध का होय काची पीते, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बो स्याण जम का भोप आपे, अनक जतन कर तृष्णा त्रापे, पेख अनेक अग्नि बुझे, कूट पाव दरगह नि सिजे, छूट सनाही उपयाल, मोह व्यापे माया जाले, अवर करतूस अगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जब दुख जाए, नानक बोले स सुपाए, चार पदार जे को मांगे, साधना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम रदा सदगावे, जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग हो मैं छोरे, जे को जन्म ते डरे, साधना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्द प्यासा, नानता के बल बल जासा, सगल पुरख में वह पुरख प्रदान, साध संजा का मिटे अपान, आपस को तो जाने नीचे, सौकनी सब त्यूचा, जहा का मन हुई सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कर चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल श्रेष्ठ साधना, सुख दुख जन समृष्टेता, नान पा पुनः लेपा, निर्तर को तन तेरो नाव निथावे, को नाव तेरा थाओ, निमाने को प्रभु तेरो मान, सगल कटा को देवो दान, कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामे, अपनी गद में जानो आपे, आपन संग आप प्रभराते, तुमरी उस तुम ते होए, नानक बरना जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम उदम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जसुन रसन बुखानी, सगल थान ते उत्तम थान, नानक जय कटवस हर।

रमैया के गुण चित पुराने कवन मूल से कवन दृष्टा ने जिनतु सात स्वार सिंगारिया गर्भ अगर मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरध प्याओ प्रसाक सैन मुख प्याओ बैठ कुदैन हे निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जय प्रसाद तर ऊपर सुख बसै सुध प्रात बीत बनता संग हसै जय प्रसाद पीवै शीतल जल सुखदायी पवन पावक अमूला जय प्रसाद भोगे सबरसा सकल समग्री संग साध बसा जिन्हे हस पाव करने तरसना तिस त्याग अवर संग्रचना ऐसे दुख मुड़ अंध ब्यापे नानक काढ़ लियो प्रभ आपे आदि अंत राखन हारति सुप्रीत न करै गवारे जाकी सेवा नव निध पावे तासे मुड़ा मर नी लावे जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंदाजा न दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारा मुग्ध अजाने सदा सदा एह पुलन हार नानक राखन हार अपारे रतन त्याग कोटि संग रचै साच छूट छूट संग बचै जो छटन सो असर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए जिसका शर्म करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे तोय गर्द प्रीत पसम संग होए अंध कूप में पद विकराल नानक कठ रूप प्रभ दयाले करतूत पशु के मान जात लोग पुचारा करै दिन रात बाहर पेखन त्रमल बाया छपतनाय कच करै छपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापी लोग सुवान अंतर अग्न बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरे अथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सह समाते सुन।

जय प्रसाद तेरी निकी जा सुपर सिमर सदा निराते। जय प्रसाद तेरी पात रहे गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुना कर नाथ जय प्रसाद भिखे बिस्मा दे। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहज बसना। जय प्रसाद हस्कर चला जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभु चाह अवर कतला गु गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनो पिसारे। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जापे। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसा जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे सच रे मन मेरे तू ता सिवराच। जय प्रसाद सबकी कथ होए नानक जप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सुनो आप गवाई सुहर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगासे प्रभु दया ते कमल बिगासे। प्रभु सो प्रसन्न बसा मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया आप कछु न किन हो लया। जे चित लावो चित लगे हरनाथ नानक किन कै कछु ना हाथ। श्लोक अगमगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह समुक्ता होए। सुनमिता नान बिनवंता साधना किया चरज कथा इष्टपदी। साधक संग मुखुदिल हो साध संग मल सगली खोत। साधक संग मिटै मान साधक संग प्रगटे सुग्याने। साधक संग बूझे प्रभ नेरा साध संग सबहूत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन। साधक महिमा बरन कौन प्राणी नान साधक शोभा ब्रह्मा ही समाने। साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल। साधक संग आवे बत पंचा साध संग अमृत रस बुंचा। साध संग होई सब किरीन साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कथु तावे साध संग अस्थित मन पावे। साधक संग माया ते पिन साध संग नान प्रभु सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन स मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किसो नहीं बैर साधक संग न भिगा पैर। साधक संग नाही कुमंदा साध संग जन परमानंदा। साधक संग नाही हो ताप साधक संग तज सव्यापे। आपे जाने साध बड़ाई नान साध प्रभु बन आई। साधक संग न कभू तावे साधक संग सदा सुख पावे। साध संग बस गोचर लै साधु कै संग अजर सह। साधक संग बस थान ऊंचे साधु कै संग महल पहुँचे। साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब कुल उदारे साध संग साधन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सूतन पावे जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबह सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्वथान गमनान साधक संग सफल जन्म। साधक संग नाही कशकाल दर्शन पेट होत निहाल। साधक संग कलुखत हरे साधक संग नरक पर हरे। साधक संग इहा उहा सुहेला साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे साधक संग न बिरथ जावे। पारवन सारिद बसै नानक उदर साध सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर्प निसरै। साधक संग लगै प्रमिठा साधु के संकट कर डिठा। साध संग पया गै कारी साध संगत पई हमारी। साधक संग मिटै सब रोग नान साध पेटै संजोग। साधके महिमा वेदना जाना जेता सुना चेता बख्याना। साधकी उपमा ते गुण ते दूर साधकी उपमा रही भरपूर। साधकी शोभा का नहीं अंत साधकी शोभा सदा बेअंत। साधकी शोभा उचती ऊंची साधकी शोभा मूचते मूची। साधकी शोभा साध मन आई नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखा एक बिन कोए। नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सुर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान। ब्रह्म ज्ञानी के तेज एक जो बस्ता को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक सह सुपाहु। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैं न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन हुई प्रगा जैसे तरु प्रकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च उच्चा मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नान जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसे। ब्रह्म ज्ञानी बंध ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह। ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले ताबत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी का हुई सुपला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नान ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के करंग ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार।

ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी अहमो त्यागत है। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद है। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुई अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत है। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप है। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोज में ही सनान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश है। ब्रह्म ज्ञानी का कथा न जाए अदा खरे ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर है। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पा नान ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात है। ब्रह्म ज्ञानी का सगला कार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नान ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक है होर तार जो अंतर नाम सर्व अपेख भगवान निमख निम ठाकुर नमस्कार है। नानको पर सगल निस्तार पदी मिथ्या नाई रसना पर समन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंग हेत है। करना सुना कहो कि निंदा सब ते जाना पसको मंदा गुरु प्रसाद विखे पर हरे मन की बासना मन से टर इंद्री जित पंचोग तिरह नान कुर मध्य को ऐसा अपर से वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होय पेन कर्म करत होवे नहीं कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म है। काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग रचे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर हो कृपाल है। आप दृढ़ अवर नाम जपावे नानको वैष्णु परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग है। मानते बिन से सकला परम कर पूजे सकल पार ब्रह्म है। साध संग पाप मल खोवे तिस भगवती कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीते मंत्र अर्पे विष्णु प्रीत है। हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म सोदे राम नाम सारस पीवे सो पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमरत बुझे मूल सुख में जन असूल है। चौहरना को उपदेश है नानक उस पंडित को सदा अधीश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौहरना में जपे को नाम है। जो जो जपे जिसकी गत होए साध संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुगत पात्र को तारे सर्व लोक का खुद नाम कल्याण मंगल गुण गावे। काहू जुगत कितना पाइये धर्म नान तिस मिले जिस लिखे तुरकर्म है। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास है। आत्म नाथ तिसन दरी आया दाद संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दादर के प्रवान है। अपने दास को आप कृपा करें ते दास को सब सूझी पर है। सगल संगात मुदास है सी जुगत नानक रामदास है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हरक तैसा सुख सदा अनंत है नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी समाटी तैसा मृत तैसी विखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा रजान है। जो बरताई साई जुगत नानक ऊपर कहिए जीवन मुक्त है। पार ब्रह्म के सगले ठाव जि चित कराख तैसा तिर नाम आपे कर्ण करावण जोग प्रभावे सोई फुर हो गए पसरे आप हो अनंत रंग लख न जाए पार ब्रह्म के रंगे जैसी मत दे तैसा प्रकार पार ब्रह्म करता बना से सदा सदा सदा दयाले सिमर सिमर नानक पय निहाले। श्लोक उस सद करया नेक जाने अंत न पार भार नानक रचना प्रवृत्ति बहुविध अनेक प्रकार पदे कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार विहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट वर्ण पर मैं उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म त्या तारे कई कोट कब का विचार है। कई कोट नम तनाम त्यावे नानक कर्त कंत न पावे कई कोट पै अभमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे आत्म निकोर है। कई कोट पर दर को हीरे कई कोट पर दुख न करे कई कोट बाय सरबाहे कई कोट पर दे परमाए जे जे चलावो तित लगना नानक करत कि जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पाथर बिरख न बजाए कई कोट पावन पाणी बसंतर कई कोट देश भूमंडल है। कई कोट ससियर सुर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र है। सगल समग्री अपना सूत धारे नान जिस जिस पावे ते तिसने स्तार है। कई कोट राज तम सत कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र है। कई कोट की रतन समुद्र कई कोट नाना प्रकार जंत है। कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिसाज कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाज सब ते नेरे समूह ते दूर नानक आपन पत्र है भरपूर है। कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट बहुदूनी फिरे कई कोट बैठ ची खाए कई कोट
ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ।

आप सकल में आप अनक जुग तर सब उथापे अविनाशी नाई किश खंड तारन तारि हो ब्रह्मण डे अलख पे पुरख परता आप जपय त नानक जापे जिन प्रजात सो शोभा बंत सगल संसार उतरे तन मंते प्रभु के सेव सगल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का शब्द जपय निहाले उनकी सेवा सोई लागा जिसनु कृपा करे बड़ भागै नाम जपत पाव विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर्मा ने जो किश करे सो प्रभु कै रंग सदा सदा बसै हर संगे सह सपाए होवे सोहे करण हर पछाण सोए प्रभु का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे उपजे तिस माए समाये ओय सुख निदा उन्हों बन आए आपस को आप दीनो मान नान प्रभ जन एको जान श्लोके सर्वकला भरपूर प्रभ बिरथा जनन हारे जाके सिमरण उदरिये नानक तुस बलिहारेशपति टूटी गणन हर गोपाल सर्व दिया पे प्रतपाले सगल की चिंता जिस मन माहि तिससे बिरथा कोई ना है रे मन मेरे सदा हरजा अविनाशी प्रभ आपे आपे अपने किया कुछ ना होए जिस उपरा निलोचक कोय जिस बिर नाही तेरे किस काम गत नान जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जो सगल कड़सो है तनवंता हुए क्या कुगर्भ जैसा कि तिस का दिया दर्भ असुरा जी को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वे जे को होय बह दतार ते देन हर जान गवारति जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थम थमन त्यो गुरु के शब्द मन असमन ज्यो पाखाण नाम चढ़तरै प्राणी गुरु चरण लगत निसरै ज्योंद कर दीपक प्रगास गुरुदर सद देख मन होय विगास ज्यो महा उदयन महमार्ग पावे तू साधु संग मन जोत प्रगटावे तिन संतन की बाचो तू नानक की हलोच पुर मन मूर्ख काहे बिन लाइए पूर्व लिखा कर लिखे पाइए दुख सुप्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजाने कौन बसाई तेरे संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय महनान पासिति कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज मान लिहो मन मोल राम नाम हृदय महतोले लाद के संत संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाले तन तन कहे सब कोई मुख उजल हर दर गए सोए हे व्यापार बिरला व्यापार नानता कह सद बल हारे चरण साध गे तोय तोय पियो अर्म साध गोपना जियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान है साध सेवा बड़ भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिगंत साधु राके हर गुण गाये अमृत रस तक है ओट गई संत दरियाए सर्व सुख नान ते पाया मृत को जबालन हार भुखे को देवत आधारे सर्व दान जा की दृष्टि माए प्रभु लिखे का लहना पाहे सब के तिसका उकरण जोग तिस बिन दूसर हुआ न हो गए जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल एक करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नान सो जन निर्मल थी जाके मन गुर की प्रतीत तिस जनावे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय एक होए सच करनी सच ताकि रहते सच हृदय सद कहते साची दृशाता कार सच

जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सुकर ने हारे अपन हमूद करत विचारे करते कि मित ना जाने किए नान जो तिस पावे सुवरती है विस्मन विस्म पाई विस्मा जिन बूझे तिसाए अस्वादे प्रभु के रंग राच जन रहे गुर के बद्र पदार्थ लहे ओ दाते दु कटन हार जा कर संग तर संसारे जन का सेवक सुवर्ण भागी जन का संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोके आद सच जुगाद सच है पे सच नानक हो सी पे सच अष्टपदे चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदारे दर्शन सत सत पे कन्हार नाम सत सत यावन हारे आप सत सत सब तारी आपे गुणकारी सब सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार कुसा सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सुरूर दय जिन माने करण कराम तृणमूल पुछाने जाकर दय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया पैति निरप हुए बसाना जिसते उपजे तिसमाय समाना बस माले बस गडाई ताको पिना कहना जाए भूजे भूजन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कह मन प्रदीप ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेव नाम करांगे सेवक को प्रभु पालन हारा सेवक राखे निरंकार सो सेवक जिस दया प्रभु तारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक को आप अत रखे ताकि कदम कोई ना लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुंचे प्रभु के सेव ऊंचे ऊंचे जो पर अपनी सेवा लाए नानक सो सेवक दय दिस प्रगटाया नेकी कीरी मैं कल राखे पसम करे नस्कर कोट लाखे जिसका सास न घटते आप ताकू राख देख रहा थे मान जतन कर दबो पात जिसके कर्तव्य व्यर्थ जाते मारे न राखे वरना कोई सर्व जिया करा कर सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नान पर अलख विडाणी बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृते मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिससे किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुख हर राम का संग नाम रस जो जन तृप्ता ने मंत्र नाम में नाम समाने उठ बैठ सोत नाम को नानक जन के सदका में बोलो जस जीवा दिन रात प्रभु अपने जन की निदात करे पगदा तुमके चाय पर अपने सुर है समाये जो हुआ हो वो सो जाने प्रभु ने को हुक्म बछाने जिसकी मैं मैं कौन बखानू जिसका गुण का एक न जाना आठ पैर प्रभु से हजूरी कहो नान से जन पूरे मन मेरी तिन की उठ ले मंत्र अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व सुख का दाता जिसकी शरण सर्व सुख पावे जिसका दर सब पाप मिटावे आवर स्यान सगली छाड़ते जन की तू सेवा लागे आवन जाना हो भी तेरा नान तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक रूप नरेख नरंग किछ त्रैगुण ते प्रपिन तिसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मानो की तू प्रीत आग तिसे पर नाही किश कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा नदान दयाल बख्शांदे सात तरीकी चरणी पाहु नानक कै मन एह अनुराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाए सोई हो गए हन पर जाकर ले त्रिफोर तिसका मंत्र न जाने हो रे अन द्रूप मंगल सजा कैसर थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तब तभी सर ग्रीष्म भोगी त्याय ते भगत सुख पाया नान तिस पुर काके ने अंत न पाया जा की लीला कीमत नाय सगल देव हरि अवगाहे पिता का जन्म के जन पू सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से तेह गुण में जा को प्रमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊच नीच इसके सान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेक करे एक रंगे नाना विद किनू विसार प्रभाव अविनाशी एक अहंकार नाना चलत करे खिर माहे पूर हो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जा जीवे नानक हर नाव नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे स्मृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे अगाध पताल नाम के तारे सगल अकार नाम के तारे पुरी सब पवन नाम के संग उदरी सुन सर्वन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सुजन गत पाए रूप सजा का सद सान पुरुख सत केवल प्रदान है करतू सद सजा की बाणी सतपुरुष समाए सवाणी सत कर्म जा कृतना सत मूल सत सत उत्पत सत ने करणी निर्मल निर्मल जिसे बजाय जिसे सपली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बजन साधु उपदेश सत ते जन जा कर प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता हकीकत होए आप सत गए सब सत आप जन प्रेमित गत।

0: believe in quality and they are dedicated to providing competent services to their clients.
1: ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 9056704444
2: ਕੀ ਲਗਾ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ
3: ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗੀ
2: ਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਝੇ ਬਚਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ
4: वाह मेरे हीरो आते ही कर दिया गुंडों को जीरो
5: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है
3: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर्थ लड़ने के लिए
5: तो भेज अपनी फौज अब तू ही आ जा
6: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार इतनी ताकत कहां से लाता है
5: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल जो देता है मुझे घोड़े के जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना
7: गिग एक्सप्रेस जो कि हायर कर रहे ने ओनर ऑपरेटर अते कंपनी ड्राइवर फॉर सिटी वर्क एंड मॉन्ट्रियल ट्रिप जो तुसी ओंटारियो दे किसी भी सिटी च रहने हो ते मिसिसागा तो ओशवा या मिसिसागा तो विंसर दे लोड लेना चाहने हो ते आज ही कॉल करो 905-615-0544 एक्सटेंशन 6013 गिग एक्सप्रेस
8: रब ना करे जे तुहाडी कार ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है तां फिकर करन दी जरूरत नहीं अज ही कॉल करो ST टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313 ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने ST टोइंग
7: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 di friendly dispatch ate vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lane layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

0: ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 1914 ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਦ ਕਾਮਾ ਦਾ ਨਾਮਾਰੂ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਹ ਖੜਾ ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
1: यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठे हों और वहाँ पे कोई शराब पी के एक बदमस्त मदहोश स्थिति में अगर मुख्यमंत्री पंजाब के आते हैं तो पंजाब के माथे पे कलंक है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के एमपी लोकसभा के अंदर कहते हैं कि डोप टेस्ट करवाना चाहिए सभी नौजवानों का पंजाब के शादी से पहले, मैं कहता हूँ पहले अपने MLA और अपने मुख्यमंत्री या मंत्रियों के एक ब्रेथ एनालाइजर अल्कोहल का टेस्ट ही करवा लो साहब, शोभा नहीं देता। हम प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे परंतु सबसे पहले गवर्नर साहब के पास हम जाएंगे और अपना जो, क्योंकि पंजाब इन लोगों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अभी भी कह के हटाऊँ हमारे से इस पर हमारे विधानसभा के सेशन में BJP के अंदर कि आज से पहले मुझे, मैं जब आया यहाँ पे मैं इस उम्मीद के साथ आया था कि मैं भगवंत मान जी से अपील करूँगा कि आज आम आदमी पार्टी इतनी कमज़ोर स्थिति में है, 7 MP छोड़ के गए हैं, आज आप पंजाब को केजरीवाल एंड उनके टोले से, उनका जो गैंग है दिल्ली का यहाँ बैठा है उनसे पंजाब का छुटकारा दिला सकते हो, उनको दिल्ली का रास्ता दिखाइए। परंतु अब हालात, आज भगवंत मान जी के हालात देख के मुझे बड़े अफसोस के साथ केजरीवाल जी को कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल साहब अपने ATM को ही बचा लो, पंजाब को छोड़ो, आप पंजाब के प्रति आपकी कोई भावना नहीं है, परंतु पंजाब को एज ATM देख के आप इन भगवंत मान जी जो नशे के अंदर अगर विधानसभा में आ सकते हैं पंजाब उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
2: मंत्रियों के नाम लिए थे सर, आज आपने नाम भी ले लिए या दोबारा बता देंगे?
1: बिल्कुल साहब, कैबिनेट मीटिंग के अंदर मुझे इस बात का बहुत ही दुख है, मेरे कुलीग रहे हैं साहब, संजीव अरोड़ा से मेरी इतनी मुलाकात उनसे नहीं है परंतु अमन अरोड़ा जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्हें कैबिनेट मीटिंग के अंदर जलील किया गया, जो सभ्य भाषा वहाँ पे उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई है, तो उनमें पंजाबियत, क्योंकि पंजाबी अपनी अणख अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है, वो इस्तीफा देंगे, परंतु दोनों मंत्री संजीव अरोड़ा जी और अमन अरोड़ा जी दोनों वहाँ पे आज शायद किस डर से या किस हालात के अंदर विधानसभा में आके बैठ गए, तो मैं समझता हूँ आज पंजाब की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खतरनाक है। मैं अभी प्रेजिडेंट रूल या गवर्नर रूल के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं चाहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बदल के, चाहे केजरीवाल किसी और के जुम्मे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था, चाहे चीमा साहब के सिर पे ताज रखें, चाहे अमन अरोड़ा जी के रखें, या उनके जो आजकल ब्लू बॉयड, शायद भगवंत मान जी के नहीं होंगे पर केजरीवाल साहब के ब्लू बॉयड बॉय हैं संजीव अरोड़ा जी, उनके ताज पहना दें, परंतु एक बदमस्त हाथी की तरह मदहोश व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, ये मेरा।
3: दस दी कि अमृतसर दे विच ताबड़ तोड़ गोलियां चलाईयां गईयां ने, 12वीं जमात दे विच पढ़दे नौजवान दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया। मापियां दा इकलौता पुत सी अमरजोत सिंह जिसका गोलियां मार के कतल किया गया। दस दी कि अनपछाते हमलावरां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता है। हालांकि बच्चे दे शरीर ते 2-3 गोलियां दे निशान ने जिहड़े ओह मिले ने, ते कहा जा रहा है कि इस बच्चे दा कोई कसूर नहीं सी। इसदे फिर भी अनपछाते व्यक्तियों दे वल्लों गोलियां मार के कतल कर दिता गया। दस दिए कि अमृतसर दे बाबा बकाला दे विच महसमपुर दे विच इह गोलियां ने जिहड़ियां ओह चलाईयां गईयां ने, पुरानी रंजिश दा मामला आ या फिर फिरौती दा कोई कारण हो सकदा आ, इह तां फिलहाल जांच तों बाद ही सामने आवेगा। पर जेकर स्कूल दे विच पढ़दे विद्यार्थी दा कतल कीता जा सकदा, फिर बाकी लोक किस तरह महफूज रह सकदे ने?
4: अज शाम करीब 7 बजे SHO मेहता नूं इनफॉर्मेशन आई सी ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਸਮਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਲਿਮਨਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਟੇਨਡ ਗਨਸ਼ਾਟ ਵੂੰਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੈਸਮ

गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पूरे करे पहला दावा दावा कर गुरु तेग बहादुर महाराज श्री संघ खड़ के चिड़ियों ते मैं बाज लाऊ सवा राम से एक लाऊ तब एक मत से राम गाऊ गणाई ना सवा रखना तेरे कहने का धावा बारा गिण बारा पीवो बोल खंडे तार हो जन्म से ना मैं तेरे ना बारा कर रहा तू खंडे बाटे ना अमृत साखना तेरा जन्म सफला मैं करूंगा मैं अगलिया लगना ढाटी जाता गा के

राज बनाने तरफ चले हैं, तन बनाकर गले मरे हैं, शैतन के अधीन है राज, जो न तरह इस बिगड़े कार जनों सारिया हीलिया वसीलिया तो समा लंघ जाए, फिर शैतन धारी होके जान नाल टक्कर लेनी पड़ी है। श्री अकाल तख्त साहब की जयंती तो बाद खालसा कौम के योद्धा ने एक एक फौजी सैनिक नाल खालिस्तान की सेवा में किवें योगदान पाया, इस गीत में क्यों पेश किया जाता है।

अगले प्रभात खबर पहुंची है कि चालीस सौ रेल से पुत्र माता श्री चरणजीत को जन्म। बोले सोहा। अगले प्रभाव साढ़े को शेख संघर्ष के बाबा बोर्ड बाबा गुरबख्श सिंह जी मानो जाल ने अपनी माता दलबीर कौर जी शहीद बाबा गुरभजन सिंह मानो जाल ने अपनी माता दलबीर कौर जी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होए, तू करता करना मैं नाही जा हो करी न होए। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहिया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता

राग गूजरी महला चौथा। हार के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमारी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपुता सहे, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उद्दम, जा आहर हर जियो परिया। सैल पत्थर मैं जंत उपाए, ता का रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। ऊड़ ऊड़ आवै सह कोसा, तिस पाछै बछड़े छड़िया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया।

तेरा अंत ना पारावरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपार। सब त्यावे हे सब त्यावे हे तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशस का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा। पोहपन भ्रष्ट गगन ते भई सबहन आन बधाई दई। धान्य धान्य लोगन के राजा दुष्टन दहा गरीब निवाजा। अखल भवन के सृजन हारे दास जान मोहे लेहु उबारे। कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करिया सब बैर नकाओ आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सतर हमारे मारिये। आप हाथ दै मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया। जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा।

काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर भसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन

हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत 1700 पणिजा अर्ध सहस फुण तीन कह जाय। भाद्रव सुदी अष्टमी द्रव बारा तीर सुत द्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रे उपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अफजो। दोहरा दास जान कर दास पर कीजै कृपा अपार। आप हाथ दे राख मोहे मन कर्म बचन विचार। चौपाई मैं ना कने से प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हूं नहीं त्याऊं। कान सुने पहचान ना तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो।

दास जान कर कृपा करहो मोहे, हार बड़ा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संगारो। प्रथम धरो भगवत को ध्याना, बहर करो कबता बिदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो, चूक होए कबले हो सुधारो, कवियो बाच दोहरा। जो निज प्रभ मो सो कहा, सो कहे हाँ जग माहे।

जब तुम करह सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्यान है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देहमो कोटक बसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा गते रव सस करोड़ जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एकता सुने अर गावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत की ये फल होई आद ब्याद श्वै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचावन हार वदी प्रथम सुख दावन

अंगा श्री भगवत पूरण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखानियो दोहरा

राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया,

दरबाहे सुन कै जम के दूत नाय तीरै छड़ जाहे भाव जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रतिया दरगह पाइय ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनु एह वत दे जग मह उत्तम काढ़िया विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सुवारियन

0: उसने वो है कि शराब पी के मुख्यमंत्री पंजाब का विधानसभा में आ सकता है। ये इनका अपना राजनीतिक सोच हो सकती है, परंतु जिस बात की चिंता हम गवर्नर साहब के पास गए हैं, मैंने उनसे ही बेनती की है कि शराब पी के मुख्यमंत्री विधानसभा में आए उनकी अपनी मर्जी है, परंतु कैबिनेट मीटिंग में बैठ के अपने मंत्रियों की बेइज्जती करें, जलील करें, धमकाएं उनको, वो भी उनका अपना राजनीतिक मुद्दा है, परंतु पंजाब के सर्वोच्च अधिकारी चीफ सेक्रेटरी के साथ बदसलूकी, जलालत, उनके जलील के करना, उनको धमकाना, उसके लिए मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की है कि उन चीफ सेक्रेटरी साहब को पर्सनल बुला के उनसे सारा वृतांत पूछें। अगर इस बात में सच्चाई है तो मेरा मानना है कि जिस किस्म का भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हालात हैं, चाहे वो कितने भी सबमिसिव हैं सरकार के आगे, बट स्टिल जो ईमानदार, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले के तौर पे बैठे हैं, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो गवर्नर साहब अपने ऑफिस का इस्तेमाल करके ही शुड अश्योर देम ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, एंड दे शुड सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी जो उसमें बनी रहे, क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय है, बॉर्डर स्टेट है। एक मुख्यमंत्री मदहोश होके कुछ भी चीफ सेक्रेटरी को डरा धमका के जलील करके करवा सकते हैं, ये एक बड़ी भारी चिंता का विषय है, एंड आई थिंक नेशनल लेवल पे भी इसको हम टेकअप करेंगे, क्योंकि ये कोई एक मामूली राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरा, करप्शन, जो लोग कल तक जेल से करप्शन के मुद्दे में 7 महीने से जेल में हैं, जे बेल पे आए हुए हैं, उनको सिक्योरिटी कवर देना, गवर्नर साहब को हमने कहा है, ये करप्शन के ऊपर मोर लगाने जैसा है, इससे एक संदेश चला गया सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि इनको दे हैव अ लाइसेंस टू लूट पंजाब, जो जो इनके करप्ट इनके साथी हैं, चाहे एमएलए, भी एमएलए हैं जलंधर से जिनको इन्होंने सिक्योरिटी कल ही दी है वोट लेने के लिए, ये कल से पंजाब के अंदर भूखे भेड़ियों की तरह ना लूटने लग जाएं, इनके साथी जो हैं एक लाइसेंस टू लूट लेके, इसलिए इनको नकेल डालें।
1: अमर ग्रुप हायर कर रहे 1 साल के एक्सपीरियंस से क्लीन रिकॉर्ड वाले ओनर ऑपरेटर्स ने ट्रकिंग इंडस्ट्री विच 25 साल तो वध एक्सपीरियंस अते इंटरमॉडल कंटेनर्स च वड्डा नाम अमर ग्रुप, जिथे तुहानू मिलणगे वधिया रेट्स, ऑन टाइम वीकली पेमेंट, फ्यूल डिस्काउंट्स, 24/7 डिस्पैच सपोर्ट, टोरंटो तो मोंट्रियाल, जीटीए ते ओंटारियो भर विच सेम डे घर वापसी वाले रेगुलर अते फ्लैक्सीबल कंटेनर लोड्स। हुणे कॉल करो 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 या 207, 905-893-2270 एक्सटेंशन 206 और 207। अमर ग्रुप, जिथे ड्राइवर्स नू मिले फैमिली वांग रिस्पेक्ट।
2: Best Bargain Carpets and Flooring sirf ek na hi nahi sachi best bargain hai.
3: Best bargain te milde ne brand name carpets, hardwood, vinyl ate laminate floors bargain prices te.
2: Sade store te aake aap selection vekho ya apne ghar baith ke choose karo.
3: Lajawab quality, top class service, best bargain to behtar koi nahi.
2: We also service hotels, motels, banquets and high rise buildings. Best Bargain Carpets, 905-696-7877.
4: CCCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
5: ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
5: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।
7: CWC Immigration is one of the largest immigration companies and the 4 offices in Canada and 12 in India. I know Mr. Kheran personally. I went to the office and met the clients. I think they believe in quality and they are dedicated to providing competent services to the clients.
8: ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ CWC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, 905-670-4444।
9: ਹੁਣ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾ ਵਿੰਚੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਚਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ, ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਡਾ ਵਿੰਚੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, 5732 ਹਾਈਵੇ 7 ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ, ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਫੋਰ ਬੁਕਿੰਗਸ ਕਾਲ ਨਿੰਦਰ ਤਾਲੀਵਾਲ 416-312-1318। और रैम्बो सिद्धू 416 831 360।